जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल। नट महला चौथा मन मेर संत संगत सुभवंती सुनया कथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीर्त कलयुग विच यूतम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हौ कुरबानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सा पूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा कोई यान सुनावै हर की हर गाल तिस कौ हौ बल बल बाल सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाओ। हर का मार्ग गुरसंत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल। अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो निह कपट कमावो हर की हर काल। निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्ना हर प्रब जान्यो मेरा नाल। जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट है दूर। निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम हाउ क्या जाना क्या पावै मन प्यास बहुत दर्शावै। रहाओ सोई ज्ञानी सोई जनतेरा जिस ऊपर रुच आवै। कृपा करो जिस पुरख विधाते सो सदा सदा तू त्यावै। कवन योग कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी री जावै। सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै। साई मत साई बुद्ध स्याणप जित निमखना प्रभ बिसरावै। संत संग लगे हो सुख पायो हर गुण सद ही गावै। देखियो अचरज महा मंगल रूप किश्यान नहीं दिष्टावै। कहो नानक मोर्चा गुर लाहे हो तैं गर्भ जोन कै आवै। नट नारायण।

आठ पहर गुण गायण रहाओ। साधु तूर करो नित मजन, सब किल विख पाप गवायण, पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायण। जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल ना लायण, दोए कर जोड़ नानक दान मांगे, तेरे दासन दा दसायण। नट महला पंजवा, मेरा सर्बस नाम निधान, कर कृपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान रहाओ। सुखदाता दुख पंजन हारा, गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान। क्या गुण तेरे आख वखाना, प्रभ अंतर जामी जान, चरण कमल सरन सुख सागर, नानक सद कुरबान। नट महला पंजवा, हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ। मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते, दीना ना दयाल, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, नानक दर्शन हाल। नट पड़ताल महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे नीत, बिनसै दुख विपरीत, सब अर्पो मंतन जीत रहाओ। कोई विरला अपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर पाज जन्म पदार्थ जीत। कोट पतत होहे पुनीत, नानक दास बल बल कीत। नट अष्टपदिया महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। राम मेरे मंतन नाम आधारे, खिन पल रह न सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर, गुर के शब्द सवारे। मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आगे, मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो, प्रभ एको पुरख निरारे, सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उरतारे, हर हर कथा बनियत मीठी, ज्यो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, अत फीके लोभ बेकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया, सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे, मेरे ठाकुर के जन प्यारे, सास सास सास है जेते, मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन, सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी, मोको हरजन मिल प्यारे। नानक दासन दास कहत है, हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा, राम हम पाथर निर्गुणियारे, कृपा कृपा कर गुरु मिलाए, हम पहन शब्द गुरतारे रहाओ। सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा, मैला गर्म लगारे, ना मैं सुरत वजी है दय दसो, हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी, गुरनी के बचन समारे। गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी, तिस मिलिया संको तारे, सतगुर मिलिया परम पद पाया, हों सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर परमे, लोभ पाखंड जग बुरियारे, हलत पलत दुखदाई होवे, जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवे दिन सियाल जाल संभाले, बिख माया के बिस्तारे, आई रहन पया सुपनंतर, बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया, सब कूड़े के खलवारे, साग तनार सब पुख पुखाने, दर ठंडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी, उतरे शब्द विचारे, जितने कर्ज कर्ज के मंगिए, कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर उपाए,
ਨੱਕ ਖੀਨੀ ਸਭ ਨੱਥ ਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਵ ਚੱਲੀਐ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਮਿਲ ਕਰਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਬਾ ਗਨ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਭਏ ਕੁਬਜਾ ਕਉ, ਲੈ ਬੈ ਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬੇਦਾਰੇ। ਮਾਨੁਖ ਕਥੈ ਕਥ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਬਤ, ਤਬ ਲਗ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਮਾਰੇ। ਜਬ ਘਰ ਮੰਦਰ ਅੱਗ ਲਗਾਨੀ, ਕੱਢ ਕੂਪ ਕੱਢੈ ਪਨਿਹਾਰੇ, ਸਾਗਰ ਸਿਉਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਡਸੀਐ, ਤਜ ਸਾਕਤ ਪਰੈ ਪਰਾਰੇ। ਲਗ ਲਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਲਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਰਸ ਗਾਵੈ।

क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यो कुंचर तंदुऐ पकड़ चलायो, कर उपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत तत नीके, मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभ सरदा भगत मन भावै, जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागै, सब देखै ब्रह्म पसारे। एक पुरख एक नदरी आवै, सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाई, सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवै, विच पाथर कीरे कारे। अंतरवास बहुत मुस्काई, ब्रह्म भूला मिर्ग सिंघारे। बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी, गुरपूरै कर निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे। ज्यों जन चंद्रहांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि, अपना कर लुकी जा रे। प्रभ को जन अंतर रिद लोचै, प्रभ जन के सास निहारे। कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे। अपने आप प्रभ ठाकर, प्रभ आपे सृष्ट।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे। राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे। पंच भूत सबल है देही, गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सो देखे, मुन नारद बचन पुकारे। राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे। मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वै कहन कनहारे। साकत कौ अमृत भौ सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यों ज्यों निवै साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कढै बिख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत है संत मिलै मन बिकसै, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हलक है, हलक्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कै दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छलन आया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उर तारियो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब के लिख पाप गवाता, राम रसा

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम मैं, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याईये हर हर मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मिलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किलबख हर जस जाला, मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किलबिख काट, हर हर उर तारियो गुरपुर है मेरा शीस की जय गुरवाट रहाओ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलो गुरपुर है गुरबचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावे। बहु कंचन दीजे कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लच लज पानी मटकी माट, कल युग गुरपूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे ललाट। जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी भूख तिखाट, शक्का एक माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन टहलो हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पवजल तारिया हर संत पुरखिया पार। नित चरण सेवो साध के तज लो मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम पूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तो होव ना सो होया को ना मेटनहार। अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा, राम नाम कौ नमस्कार, जास जपत होवते उधार रहाओ। जा कै सिमरन मिटै तंद, जा कै सिमरन छूटै बंद, जा कै सिमरन मूर्ख चतर, जा कै सिमरन कुलै उदर। जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै। जा कै सिमरन मुचित पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप। जा कै सिमरन रिद विगास, जा कै सिमरन कवलादास। जा कै सिमरन निद निदान, जा कै सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, कोट भगत उधार करी। हर दास दासा दीन सरन, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूर्ण काम रहाओ। बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत। जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुखै खीर। जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात। जैसे किरखै बरस मेंग, जैसे पलन सरन सेंग। गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास,

हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल। आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ। एक खिन है था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत कीने पार जना प्रभ दान दे दातार। हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अग मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ। आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक।

गया सो जो बनो धन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक।

मेरा नाव सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया। पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लून हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, आज जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

तौ देवा ना जानिए जा एकाकार कमाए हुक्म पछाण खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ देवा ना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर मनुख फिरै से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू देह।

हेत के बंधन तोड़ ना साके ता जम करे खुआरी जियो। ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुरु दिया। जिस तू देह तसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो। मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह बैसालै तै बैसा स्वामी जय भेजै तै जावा। सब नगरी मैं एको राजा सबे पवित्र है थावा। बाबा देह वसा सच गावा जाते सहजे सही समावा रहाओ। बुरा भला किछ आपस ते जानिया ए ही सगल विकारा। एहो फरमाया खसम का होवा वरतै ओ संसारा। इंद्री धात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई। आपे खेल करे सब करता ऐसा बुझे कोई। गुरप्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बिनासी। ज्योतिष पाणा सो सतकर्मा नया काटी जमकी फासी। पणत नानक लेखा मांगे कवना जा चूका मन अभमाना। तास तास धर्म राय जपत है पै सच्चे की सरना। मारू महला तीजा आवन जाना ना थी निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार। गुर कै शब्द ते आए तू ता सच लगी प्यार रहाओ। ऐथै नावो भुलिया फिर हथ कथाऊ ना पाए। जोनी सब पवाईयन बिष्टा माए समाए। वडभागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए। अंदर सच्ची भगत कर सच्चा ले मिलाए। आपे सृष्ट सब साजियां नू आपे नजर करे। नानक नाम वड़ियाईयां जय भावें तैं दे।

जन कौ आप अनुग्रह किया, हर अंगीकार करे सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा तारी और धरियो नाम हरे, मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिवलाई, साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्राद करव्या शरण परे जपियो ते पाए, गुरमुख पार पाया मेरे मन नाम जप तरिया। तन्ना जट बालमीक बटवारा, गुरमुख पार पया रहाओ सुर नर गण गंधर्वे जपियो, रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्मै देवी जपियो, मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया, कोट कोट ते तीस ते आयो हर जपते अंत ना पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया, मुख पंडित हर गाया, नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया। अंत तरंगी नाम जिन जपया, मैं गणत ना कर सकया, गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुरतार कृपा हर नाम दृढ़ायो, जन नानक नाम लया।

अड़े जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावे जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल्ले जावे जियो माया मोह।

तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किल विख कट है हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चलद्या नाल सिखाई जियो। जिसनो कृपा करे सो त्यावै, नित हर जप जापै जप हर सुख पावै। गुर प्रसादी हर रस आवै, जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निरपो निरंकार सतनाम, जग में सृष्टि उत्तम काम। दुश्मन दूत जमकाल ठेह मारो, हर सेवक नेड़ न जाई जियो। जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया।

अपनी चलता, जिस हर राखै तिस कौन मारै, जिस करता आप छिड़ाई जियो, हवन दिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे, दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छिड़ाई जियो, मारू महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। डर पै तरत आकाश नखियत्रा, सिर ऊपर अमर करारा, पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा, एका निरपौ बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ, देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जो नी जोया, राजस सातक तामस डर पै केते रूपयो पाया, शल बपरिय कौला डर पै अत डर पै धर्म राया, सगर समग्री डर ब्यापी बिन डर करने हारा, कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहै दरबारा। मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारक, हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे, मेरे ठाकर केते अगंत उधारे, मोहे दीन अल्प मत निर्गुण पर्यो सरन द्वारे, रहाओ बालमीक सुपचारो तरयो बद्धक तरे बिचारे, एक निमख मन माहे अराध्यो गदपत पार उतारे, कीनी रखिया भगत प्रहलाद हर नाक्ष नखै बिदारे, बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले को लियो जारे, कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे, आयो साम नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारे।

अवर दिन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजै प्रभ जियो, जा दिन हर जस गाए रहाओ। पुत्र कलत्र गृह देख पसारा, इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पए उदमाते, हर हर कबो न गाए। एह बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ, मांगन कौ दान आए। त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरण आए, कहो नानक हर मिल पए एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान धीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चिहन सुन उपर शोहयो, मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत, चलते खबर ना पायो रहाओ। सहनशील पवन यार पानी, बसदा खिमा ने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा, इनमें कवन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता, नाले हों मैं पाई, जन मरण उस ही कौ है रे, ओहा आवै जाई। बरन चिहन नाही किछ रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारै, तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ, नाम रतन गुणा हर वणजे, वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवयो अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो, तिस्ते मुख नहीं मोरयो, सहजानंद रख्यो गृह भीतर, उठ वाहू कौ दौरयो। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो घर खनी जान्यो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक, सवरे हलत पलाता, तन सेवक सफल ओह आया, जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकर, कीर्तन हर हर गाई, श्रमथा का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ निवारे, निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर, कत न पयो दुराई। सुख शीतल सरदासा पूरी, होए संत सहाई, पावन पतथ किए खन पीतर, मैं मां कथन ना जाई। निरपौ पय सगल पै खोए, गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावे ठाकर का, रहन दिन सलिवलाई। मारू महला पंजवा, जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खन पीतर ता कौ, ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ कहो क्यों ना समार सरे, बैरी संग रंग रस रचिया, तिस्यों जिया राजार सरे रहाओ।

गुरमंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन ना पाए। हरे नार इन बिद पार पराए, त्याय हर जी होए मृतक, त्याग दूजा पाओ। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा, बाहर टूंडन ते छूट परे, गुर घर ही माए दिखाया था। अनपव अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ना कथू जाया था। मानक पायो रे पायो, हर पूरा पाया था। मोलिया मोल ना पाया जाई, कर कृपा गुरु देवाया था। रहाओ आदिष्टा गोचर पार ब्रह्म, मेरा साधु कथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वजयो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मंत्रशना बूझी, अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुरसेवे, अगड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खे लाया था। कहो नानक परम गुर खोया, ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा, जिसे साज निवाजया, तिसे स्यो रुचना है। आन रुति आन बोई है, फलना फूलैता है। हरे मन वत्र बीजन नाओ, बोए खेती लाए मनुआ, पलो समो सुआओ। रहाओ खोए खेड़ा परम मन का, सदगुर सरनी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया, सोई कार कमाए। पाओ लागा गोबिंद स्यों, काल पाई थाए। खेत मेरे जमया, निखुट न कबहू जाए। पाया अमोल पदार्थो, छोड़ न कतहू जाए। कहो नानक सुख पाया, तृप्त रहे आगाए। मारू महला पंजवा, फूटो अंडा परम का, मने पयो परगास। काटी बेरी पगहते, गुरकीनी बंद खलास। आवन जान रहे हो, तप्त कड़ाह बुझ गया, गुरशीतल नाम दियो। रहाओ जब ते साधु संग पया, तो छोड़ गए निगहार। जिसकी अटक तिस्ते छुट्टी, तो कहां करे कोटवार। चूका पारा कर्म का, होए नेह कर्मा। सागर ते कंडे चढ़े, गुर की ने तरमा। सच थान सच बैठका, सच स्वाओ बनाया। सच पूंजी सच वखरो, नानक कर पाया। मारू महला पंजवा, बेद पुकारे मुख ते पंडित, का ममन का माठा। मोनी होए बैठा एकांती, हृदय कल्पन गाठा। होए उदासी गृह उता चलियो, छुटके नाही नाठा। जी की कह पै बात कहा, आप मुक्त मौको प्रमेले, ऐसो कहा लहा। रहाओ तपसी करके देही सादी, मनुआ दे दस्ताना। ब्रह्मचार ब्रह्म चज कीना, हृदय पया गुमाना। सन्यासी होए कह तीर्थ प्रमयो, उसमें क्रोध बिगाना। कुंगर बांध पहे रामदासा, रोटियन के उपावा। बर्त नेम कर्म खटकीने, बाहर पेख दिखावा। गीत नाद मुख राग आलापे, मन हर हर गावा। हरक सोग लो मोह रहत है, निर्मल हर के संता। तिन की तूड़ पाए मन मेरा, जा दया करे भगवंता। कहो नानक गुर पूरा मिलिया, ता उतरी मन की चिंता। मेरा अंतर जामी हर राया, सबके जाने मेरे जी का प्रीतम। बिसर गए बकबाया। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा, कोट लाख सर्ब को राजा। जिस हृदय नाम तुम्हारा, जा को नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर्जन मैं गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवे तब ही पत पूरी। बिसरत रलिए खाक। रहाओ रूप रंग खुशिया मन पोगण, ते ते छिद्र विकारा। हर का नाम निदान कल्याणा, सुख सहजो सारा। माया रंग बिरंग खिने मैं, जो बद्र की छाया। से लाल पहे गूढ़े रंग राते, जिन गुरमिल हर हर गाया।
ਊਚ ਮੂਚਿਆ ਪਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਗਮ ਦਰਬਾਰਾ, ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਿਆਰਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓਅੰਕਾਰ ਉਤਪਾਤੀ ਕੀਆ ਦਿਨ ਸੋ ਸਭ ਰਾਤੀ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਪਾਣੀ ਚਾਰ ਬੇਦ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਵਾ ਇੱਕ ਵਾਵੈ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਾ। ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਬੂਜੋ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੂਜੈ ਰੇ ਰਹਾਉ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਆਵੈ ਜਾਈ ਮਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਰਾਈ।

पूर्ण अतर त्याग आए सहज समाद सुभाए हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया। मारू महला पंजवा कर छेवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सयाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देतना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जंतु किया प्रभ करण कारण एक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन नाम

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजली महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सा सास माले सोई उथे खसम छड़ाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवां वैदो ना वाई भैनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जा का काम है भक्त जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा मैं राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निद गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसै गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत्ति अपनी करमानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर ऊपर तब सोभ तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूटत तो नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जा

माया तारी कर कर मांगे जग प्रभु दय मन अंधे पतहारी परम कुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगना गुर बिन बूझे बाहर पुअर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे आठ सठ तीर्थ परम गुचे क्यों मल तोपे पापे शानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहरी एक न जाने साच कहे ते शो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत यो है नाम न जपई क्यों सुख पावे बिन नावे क्यों सो है मूंड मुडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभमाना मनवा डोले दे दस्तावे बिन रात आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना कीर्तना मिटई हुक्म न बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मंत्र सना उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित लाया पर नारी सिख करे कर शब्द ना चीने लंपट है बाजारी अंतर बिख बाहर ने प्राती ताजम करे खुवारी सो सन्यासी जो सतगुर सेवै विचों आप गवाए शादन भोजन की आस न करे अचंत मिले सो पाए बके न बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चित लाए आस निरास रह सन्यासी एक सुन लिव लाए हर रस पीवे ता सांत आवे नी कर ताड़ी लाए मनुआ ना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नावरते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उतारी नाम बिना ने छूट स्नानक साची तर तू तारी मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाए रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार भवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है अफरियो पार अफार टरे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सबै सिर अहनिस दात समार करे चार पदार्थ लै जग जन्मया शिव शक्ति करवास धरे लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे इत्ते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कुटंब स्यो प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर शब्द ना आप पछाणे बिन हर नाम ना काल टरे जेता मोह हमे कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन तन बिन सहसा सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद भया जोबन तन खिसिया कफ कंठ बिरुदो नैनो नीर टरे चरण रहे कर कंपन लागे सागत राम नारदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे ना पावे रखे ओ करे बिसरत नाम ऐसे दोख लागे जब मारस मारे नरक खरे पूर्व जन्म को लेख ना मिटई जन्म मरे का को दोष धरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जाको हर प्रभ नजर करे ते निर्मल पुरख परंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरो गुर बचन समारो संगत हर जन भाव करे हर जन गुर प्रधान दुआरे नानक तिन जन की रेण हरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मारू काफी महला पहला कर दूजा आवो वन्यो डुमनी किती मित्र करे ओ सातन टोई नाल है वाडी क्यों तीरे ओ
ਮੈਂਡਾ ਮਨ ਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਏ।

लाए। प्रेम की सार सोई जाने, जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। देव दृष्ट जागे परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी है जगत पछाणे, गुर कै शब्द विचारी जियो। संजोगी तन पर मेला होवे, गुरमत विचों दुरमत होवे। रंग स्यों नित रलिया माणे, अपने कंत प्यारी जियो। सतगुर बाजौ वैद ना कोई, आपे आप निरंजन सोई। सतगुर मिले मरे मंदा, होवै ज्ञान विचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए, गुरमुख तृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाई है, कर कृपा कल तारी जियो। आगम निगम सतगुरु दिखाया, कर कृपा अपने कर आया। अंजन माहे निरंजन जाता, जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवै सो तत पाए, अपना या विचों गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावै, वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फरै हंकारी, एक ना गुरमुख हो मैं मारी। सच्चै शब्द ते बैरागी, होर भ्रम भूले गावारी जियो। गुरमुख जिनी नाम ना पाया, मानमुख बिरथा जन्म गवाया। अगै विणना वै को बेली नाही, बूझै गुर विचारी जियो। अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरपूरै जुग चारे जाता। जिस तू देवै सोई पाए, नानक तत विचारी जियो। मारू महला पंजवा, कर तीजा अष्टपदियां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद लख चौरासी, प्रमते दुलभ जन्म अब पायो। रे मूड़े तू होछै रसल बटायो, अमृत संग बसत है तेरा। बिख्या सिंह रजायो रहाओ, रतन जवेहर बन जन आयो। कालर लाज चलायो, जे घर मैं तुद रह ना बसना, सो कर जीतना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमख नहीं तुझ गायो। जहां जाना सो थान विसारयो, एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र गृह देख समग्री, इसी मैं उर जायो। जित को लायो, तित ही लागा, तैसे कर्म कमायो। जो भयो कृपाल, ता साध संग पाया। जन नानक ब्रह्म त्यायो, मारू महला पंजवा। कर अनुग्रह राख लीनो, भयो साधु संग। हर नाम रस रसना उचारै, मिष्ट गूढ़ा रंग। मेरे मान को अस्थान, मीत साजन सखा बंद पयंत्र। जामी जान रहाओ, संसार सागर जन उपायो। शरण प्रभ की गही, गुरप्रसादी प्रभ आराधे। जम कंकर किश नाम कही, मोख मुक्त द्वार जाकै संत रिदा भंडार। जी जुगत सुजान स्वामी, सदा रखन हार। दुख दर्द कलेस बिनसै, जिस बसै मन माहे। मृत नरक अस्थान बिखड़े, बिखना पोहै ताहे। रिद सिद्ध नवनिद जाकै, अमृता प्रवाह। आदि अंते मध पूर्ण, ऊच अगम अगाहा। सिद्ध साधक देव मुन जन, वेद करै उचार। सिमर स्वामी सुख सहज पुंचै, नहीं अंत पारावार। अनक प्राशित मिटै खिन मैं, हृदय जप भगवान। पावना ते महापावन, कोटदान इशनान। बल बुद्ध सुध प्राण सर्बस, संतना की रास। बिसर नाही निमख मनते, नानक की अरदास। मारू महला पंजवा, शस्त्र तीखण काठ डारियो। मन ना कीनो रोस, काज उवा को ले सवारियो। तिल ना दीनो दोस, मन मेरे राम रहो नितनीत। दयाल देव कृपाल गोविंद, सुन संतना की रीत। रहाओ चरण तले उगाहे बैस्यो, श्रम ना रहो शरीर। महासागर ने व्यापै, खनै उतरियो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन, ते संगे नहीं प्रीत। बिष्टा मूत्र खोद।

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त न होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझे ओह बालक वांगी पाली है छोड़ बह तौ छूटे नाही जौ सिंचै तौ पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर ढाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवां बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानियां पाप करेंदण सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करन करीम न जातो करता तिल पीड़े जो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर अगली गल न जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए।

तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के तेजग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण अंधन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्सी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे, सब तेरी कुदरत तू सिर सर दाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए, हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत नकाई, हाँ मैं मार करो गुरसेवा, जन नानक।

गुर पूरे बिन मुक्त ना होई, सच नाम जप लाहा हे, पड़े मन मुख पर बिद नहीं जाना, नाम ना बूझे भरम भुलाना, लैके वड्डी दिन उगाही, दुरमत का गल फाहा हे, सिमरत शास्त्र पड़े पुराना, वाद वखाणे तत ना जाना, विण गुर पूरे तत ना पाई है, सच सूचे सच रहा हे, सब सा लाहे सुन सुन आख है, आपे दाना सच पर रख है, जिन को नजर करे प्रभे अपनी, गुरमुख शब्द सलाहा हे, सुन सुन आख है केती बाणी, सुन कहिए को अंत ना जानी, जा को लख लख

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग विजोग मेरा प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख शीर्ष नाहा हे। नीके साचे केवा पारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चा ओ महा हे। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन भाण, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मे

सुन कलाया परंपर धारी आप निरालम अपरियापारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएंदा पौन पानी सुनै ते साजे सृष्टियो पाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जोत तुम्हारी सुन्ने कला रहाएंदा सुनो ब्रह्मा विष्णु हे सियो पाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिसमलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिनसा जे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गैनारे तिसकी जोत तिरपमन सारे सुन्ने

पाए त्रिभवन साज मेखली माया आपो पाए पाएगा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत की आसर करता है बिस्मा सब देखाएगा सुनो रात दिन सदुए किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमरा तीता गुरमुख नहीं कर पाएंदा साम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ता की कीमत कह ना सके को त्यों बोले ज्यो बोलाएंदा सुनो सबत पता लियो पाए सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया अपरंपर सब तेरो किया कमाएंदा राजतम सतकल तेरी छाया जन्म मरण हमें दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्टियो पाए किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरमुख समझे रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगै जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाएंदा पंच तत् सुनो परगासा देहा संजोगी कर्मा अभ्यासा बुरा भला दो मस्तक लिखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रते हर असमत वाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया कौ नेहो कनेरा कोई बुझो ज्ञानी करो नवेरा आसा मनसा हो मैं सहसा नर लोभी कूड़ कमाएंदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाद सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद सब तुहनु सच।

बिन नावें डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावें डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावें मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड़ियाई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, ज्योत पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब सरण तुम्हारी, कर कृपा आप पिछाता है, जिसनो नदर होवै तुर तेरी, मरै न जम्मै चूकै फेरी, साचे गुण गावै दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुत पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पिछाता है, पाप पुन वर्तै संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पिछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पिछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे, मनमुख भरम भुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू समय वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय ईंधन में बाधी, सो प्रभ राखे पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन में थापो थापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व में जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किश कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंध पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुनो, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईश, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन दाता, सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सबै उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पै एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करे सो तन तत् मन, पिर तने सिंगार रखे संगन, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तने दिलासा है। धन मांगै प्रयो बोबे तावै, जो पावै सो आन दिखावै, एक वस्त को पहुँच ना साकै, तन रहती भूख प्यासा है। तन करै बिनो दो कर जोरै, प्रे परदेस ना जाहो वसो कर मोरै, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरै भूख प्यासा है।
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तौ धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत्कार चन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊट सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु न समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा है, आई आ गया पिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊट सिदायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, हरे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचबुए साकत, निगुरे गल जम फासा है, मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख भोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावे जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ ना कत ही जासा है, गुण निदान किश कीम ना पाई, घट घट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख भंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, घट घट पूर्ण सिर सिरै नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच धारियो सब साचा, सच्चे सच वरती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सब के जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरा, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवे, देह दान सब सह जंत लोवे, टूट ना आवे पूर भंडार, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एकदा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करे भगत हर रंग अपारा, खिन मैं थापो थपनहारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भक्ति जाहे, जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवे सो वे प्रवाह, जिस चीत आवे सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਪਹੁ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਆ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰਦੂਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਮਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀ ਜਾਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲਹੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਬਿਗਨਾ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਗੋਸਾਈ। ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਪੂਰੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇਈ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਚਲਥਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏਂਦਾ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਾ ਨਗਰੇ ਹੋ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ। ਤ੍ਰਿਹੋ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੈ

गुरमुख जपिया लाए त्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोवा, सब काल है वसे आप प्रभ किया, निचल एक आप अबनासी, सो निचल जो तसै बुझाएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बो पाती, फिर सरलै सल समाएंदा। एक जाचक मंगै दान द्वारै, जां प्रभावै तां कृपा धारै, देहो दरस जित मंत्र पतासै, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकुर कित वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संतां पावै। कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएंदा। जिथे औकट आए बंत है प्राणी, तिथे हर त्याई है सारंग पानी। जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा। वड्डा साहेब अगमा थाहा, क्यों मिलिया प्रवे प्रवाहा। काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कही है, बुरा भला दो संसार सही है। हौ मैं जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सहि समाएंदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अति तो दासी। अनक रंग करै बो भाती, जो पिता पूत लाडाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिया जा ले मिलाई। गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय धरी सब तरना। जन नानक शरण पया हर द्वारै, हर भावै लाज रखाएंदा। मारू सोलहे महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी सरवणी सुनियै। दूजी अवर ना जाप सकाई, सगल तुम्हारी धारणा। आप चितारे अपना किया, आपे आपे आप प्रभथिया। आप उपाय रचियोन पासारा, आपे कटकट सारणा। एक उपाय वड़ दरबारी, एक उदासी एक करबारी। एक भूखे एक तृप्त अगाए, सबसे तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा, पोत पोत भगतन संग राचा। आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप सारना। सदा सदा सद हो बनहारा, ऊंचा अगमा था अपारा। ऊने परे परे पर ऊने, एह चलत स्वामी के कारणा। मुखसा लाही सच्चे साहा, नैनी पेखा अगमा था। करनी सुन सुन मंतन हरिया, मेरे साहेब सगले उदाहरणा। कर कर वेखै कीता अपना, जी जंत सोई है जपना। अपनी कुदरत आपे जाने, नदरी नदर निहालना। संत सभा जै बैसै प्रभ पासे, आनंद मंगल हर चलत तमासे। गुण गावै अनहद तुन बाणी, तै नानक दास चितारना। आवन जाना सब चलत तुम्हारा, कर कर देखै खेलिया पारा। आप यो पाए यो पावन हारा, अपना किया पालना। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सदा सदा जाई बलिहारी। दोए कर जोड़ सिमरव दिन राती, मेरे स्वामी अगमे अपारणा। तुद बिन दूजे के सालाही, एको एक जपी मन माही। हुक्म बूझ जन पै निहाला, ए पगता की कहलना। गुर उपदेश जपिए मन साचा, गुर उपदेश राम रंग राचा। गुर उपदेश तुटै सब बंधन, एहो परम हो पर जालना। जय राखै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पहलमाना। बिन से बैर नाही को बैरी, सब एको है पहलना। डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभ पुरख निरारे। आप छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ तिस कहलना। ऐसा को वड भागी आया, आ
ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿਨ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸਭ ਕੋਈ ਸੋ ਪਰਵਾਰ ਸਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਖਸਮ ਤੇ ਪਾਵਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਤੇ ਆਵਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮ ਸਹਿ ਸਮਾਵਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਉਚਾਰਨਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਰਤ ਦੇਖਣਾ ਭੂਲ ਗਵਾਰਾ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਰਾ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਏ ਨਿਚਲੇਕ ਨਰਾਇਣਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਪਉ ਸਰਨਾਈ ਮੋਹ ਸੋਗ ਸਭ

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रह संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणे कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुवै नाही, जिस जनाए तिसै जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलैही कीने, ताकि कीमत कहन ना जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंध कूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला

पौड़ी। पाणे हुक्म नायोन पाणे सुख पाया, पाणे सतगुर मेलेओन पाणे सच ते आया। पाणे जेवड होर दात नाही, सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा। जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पै की नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा। मन की पत्री वाचनी, सुखी हूं सुखसार, सो ब्राह्मण पलाया खीय, जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पड़े, गुर कै शब्द विचार, आया ओ प्रवान है, जे कुल का करे उधार। अगे जात न पुछिए, करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना, बिखिया नाल प्यार। अंदर सुख ना हो गई, मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे, गुर कै हित अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का, सोई नर कच्चा। जित भावै तित लाएंदा, गुरमुख हर सच्चा। सबना का साहिब एक है, गुर सबदी रचा। गुरमुख सदा सलाही है, सब तिस दे जच्चा। ज्यो नानक आप नचाएंदा, तिवही को नचा सुद। मारू वार महला पंजवां, डखणे महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू चाहो सज्जन

जो जन हर का सेवको हर तुसकी कामी दखणे महला पंजवा मुखो अलाय हब मरण पछाणन दो कोए नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हिकड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुर भेटिया। महला पंजवा मतड़ी कांड कुआ पाव तो मंदो पीवसा मूतन प्रेम था पसन कु सच्चा तनी पौड़ी निरपव नाम विसारिया नाल माया रचा आवै जाए पवाई है बोझो नी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खच्चा वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पात साहे वेख तुर करमचा जम दूती है हेरिया दुख ही मैं पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा डखणे महला पंजवा पर बाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मल उतर है सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुनी नामे हुनिया नानक सफल जनम जय कट वुठा सच धनी महला पंजवा लोयन लोई डेठ प्यास न बुझै मुकणी नानक से अखड़ियां बयान जिनी डसन दो मां पेरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई ओ आप तरिया कोटम स्यों सब जगत तराई ओन हर नामा तन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सब कीते आ सब नाल सुभाई होवा ओही अल जग मैं गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई। डखणे महला पंजवा सच सुहावा कंडी है कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्ले होए महला पंजवा सज्जन मोख्या नूपो अठे पहर निहाल सा सुतड़ी सो सहु डेठो तै सुपने हो खनी है महला पंजवा सज्जन सच परख मोख्या लावण थोथरा मन मजाहू लख तुदो दूर ना सो पिरी पौड़ी धरते आकाश पाताल है चंद सूर बिनासी बाद साहा साहा उमराव खान टाहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोग सदासी काजी शेख मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कंबर ओलिए को थिर न रहासी रोजा बाग नवाज कतेब विण बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अबनासी डखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोए आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आस क्यासा बाहरा मुंह मन वड्डी आस आस निराशा हिक तू हाँ बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख विन डिठे मरे ओद बाज प्यारे अपने बिरही नाती रोद पौड़ी तट तीर्थ देव देवालिया केदार मथुरा काशी कोट तेतीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खर दर्शमासी पोथी पंडित गीत कवत कवते पीजासी जति सती सन्यासिया सब काल वासी मन जोगी दे गंबरा जमै सन जासी जो दिसै सो विनसना सब बिनस बिनासी थिर पार ब्रह्म परमेसरो सेवक थिर होसी सलोक डखणे महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख न भुखिया डुखे कोण न डुख नानक प्री पखंदो सुभ दिष्ट महला पंजवा
ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਭੂਮ ਸਬਾਈ ਕੋ ਤਣੀ ਨਾਨਕ ਹੱਬੋ ਰੋਗ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਮੇ ਹੁਣਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿਕ ਸਕੂ ਤੂੰ ਆਹੇ ਪਛਾਣੂ ਪੀ ਹਿਕ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਭਾਹੇ ਮਾਨਖ ਪਰਥਾਈ ਲੈ ਜੀਵ ਦੋ ਪੌੜੀ ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਨਰਾਇਣੋ ਹਰਗਮਾ ਗਾਦਾ ਨਿਹਚਲ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਲਾਦਾ ਨਿਹਚਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾ ਵਾਦਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਰਾਦਾ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੋ ਜਿਸ ਕਰਮ ਲਿਖਾਦਾ ਨਿਹਚਲ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਟਲੈ ਨਾ ਟਲਾਦਾ ਨਿਹਚਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨ ਬਚਨ ਨਿਹਚਲ ਗੁਰਸਾਧਾ ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਦਾ ਸਲੋਕ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਡਬੰਦੋ ਆਪ ਸੋ ਤਰਾਏ ਕਿਨ ਖੇ ਤਾਰਿੰਦ ਲੋਪੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਸਿਉਂ ਰਤਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਕਥਨ ਨਾਉ ਸੁਣੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਮੂੰਹ ਜਲਾਉ ਤਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥੀ ਉਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ

साच शब्द बिन कबो न छूट सो वृथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हो ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अगल पई होची शब्द सहज नहीं बूझिया। जन पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुरे अंध न सूझिया। रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी। प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी। पहराओ महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी। नेत्री धुंद करन पै बहरे मनमुख नाम ना जानी। अंदले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा। चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती। जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस। पशु पहे कदे होहे नानी के अमृत का रस विरली पाया। सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया। तब लग काल संताए अनको दर कर कबहू ना जानस। एको दर सचियारा गुर प्रसाद परम पद पाया। नानक कह विचारा पहरो महला पहला। सगली रैन सोबत गलफाही दिन से जंजाल गवाया। खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जग त्यो पाया। मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊं दो कवल मन मुख मत होची। मन अंदे सिर धंदा काल बिकाल सदा सिर तेरे बिन्ना मैं गलफंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंदले शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंदलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान में हूणे। शब्द विचार राम रस चाखिया नानक साच पतीणे। पहरो महला पहला गुर कै संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता यवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता। सोजन ऐसा मैं मन भावै आप मारे परंपर राता। गुर की कार कमावै रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन आदि पुरखिया देसो। घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहया सच वेसो। साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाह पावस गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटै गुरसेवा नानक नाम सखाई। पैरो महला पहला हिरदय नाम सर्व तन धारण। गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते कृतार्थ सह ध्यान लिवलाई है। मन रे राम भगत चित लाई है गुरमुख राम नाम जप हिरदय सह सेती कर जाई है रहाओ। परम भेद पौ कबो ना छूटस आवत जात ना जानी। बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मोए बिन पानी। धंधा कर तो सगली पत खोवस भरम ना मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंत पसारा। अकुल निरंजन स्यो मन मानिया मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एको जानिया नानक अवर ना दुआ। पहरो महला पहला जगन होम पुनता पूजा देह दुखी ने दुख सहै। राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावै बिख बोली बोलै। बिन नामै नेफल मर भ्रम ना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणै संध्या कर्म तिकाल करै। बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरै। डंड कमंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गवनियत भ्रमण करै। राम नाम बिन सांत न आवै जप हर हर नाम सो पार परै। जटा मुकुट तन भस्म लगाई
बस्त्र छोड़ तन नग्न पया, राम नाम बिन तृप्त न आवै, किरत कै बांधै भेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कदर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राग पैरव महला तीजा, चौपदे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जात का गर्भ ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गावारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। रहाओ चारे वर्ण आख्या सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांड है कड़ै कुमारा। पंच तत् मिल देही काया कारा, घट वद को करै बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई। पैरव महला तीजा, जोगी गृही पंडित भेख तारी। ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोए। जागत रहे ना मुसे कोई, रहाओ सो जागे जे सतगुर मिले। पंच दूत ओ वसकत करे, सो जागे जो तत् विचारे। आप मरे अवरा ने मारे, सो जागे जो एको जाने। पर किरत छोड़े तत् पछाणे, चहो वरना विच जागे कोई। जमै काले ते छूटे सोए, कहत नानक जन जागै सोए। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरव महला तीजा, जा कौ राखै अपनी सरनाई। साचै लागै साचा फल पाई, रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे होवा हुक्मे वर्तारा, रहाओ एहो आकार तेरा है तारा। खिर मैं बिनसै करत ना लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा पूजो परम ना पूलो कोए। पैरव महला तीजा, मैं कामण मेरा कंत करतार। जिहा कराए तिहा करी सिंगार, जात सपावै ता करे भोग। तन मन साचे साहिब जोग, रहाओ उसत निंदा करे क्या कोई। जाया पे वरतै को सोई, गुर प्रसादी प्रेम कसाई। मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई। पंत नान

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावें मनमुख

नाम बिना सब दुनिया शार, अचर जो तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं क नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंद कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवीय तित बिगड़ सकाज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यास पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए,

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन में लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राख दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सोवड़ भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिद माहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमर तो किस चाख ना जो है हर सिमर तो दैत देव ना पुहै हर सिमर तो मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो नारुदय हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया केला जात अजात जपै जन कोए जो जपै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्रिपवन सार जाकै सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोए सागर तरिए नाम कै रंग गुण गावै नानक साध संग
मुकत भुगत जुगत वस जा कै ऊणा नाही किस जनता कै कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न नानक दास सही जन तन पहराओ महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित पए बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वसिया मन आए राम राम संत सदा सहाय कर बाहर नाले परमेश्वर रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ धनवाल जोबन जुगत गोपाल जी प्राण नित सुख प्रतपाल अपने दास कौ दे राखे हाथ निमख न छोड़े सद ही साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोए सर संभाले साचा सोए मात पिता सुतबंध नारायण आद जुगाद भगत गुण गायण तिसकी तार प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं होर नानक कै मन एहो प्रखार्थ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पहरो महला पंजवा पह कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिह गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाओ हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम जन का दर्श बांछे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभमान ऐसे संत भेटे वडभागी नानक तिनकै सत कुरबान

नाव मेरे बंध पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौ नद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे सेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाड़े दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओह चेतना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलके करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर मेरा कर कर मरै निज पदू।

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदबोलंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ अंतर देव न जन अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक पता

कैकाई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साक्रमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कहे कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु का स्वर आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्र सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम्बरता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ ते तीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर दरू बानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हमसरा पिखारी देव जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर वाडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमा वासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अग्न सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम द्रुगम गढ़ रचियो बास जामै जोत करे प्रगास बिजली चमके होए आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तरमंत

रहाओ मिथ्या जिहबा अवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस ना मैं हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे हुए नरा। प्रणवत नाम देव ना कह बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरे गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राए, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदाओ भले निंदाओ भले निंदाओ लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिलै ते पार उतार है। हस्त खेलत ते

भगत जना का देहुरा फिरे, पैरो नाम देओ जियो कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड़ कुटम परायण ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी सही सुभाए पयो बैरागी रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु ना टूट सो रया समाए नामे चित लाया सच नाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता ऐसा हर सेती मन राता, प्रणवै नाम देव लागी प्रीत गोविंद बसे हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा पर नारी सो का लै तंदा, जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कार्य अग्नि माहे जलत रह मिटवै कब नाहे, रहाओ हर की भगतना देखा जाए। मार्ग छोड़या मार्ग पाए मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा कापर पहर करै सिंगारा, पूरे ताल निहाले सास वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो करमा सो पज पर है गुर की सरना, कहत नाम देव एहो बीचार इन बित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे पड़े नहीं हम ही पछारे, राम कहे कर ताल बजावे चटिया सबे बिगारे। राम नामा जप बो करे हृदय हर जी को सिमरन धरे, रहाओ बसदा बस कीनी सब राजे बिनती करे पटरानी। पूत प्रहलाद कया नहीं माने तिन तौ और ठानी, दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औद कनेरी। गिरताल जल ज्वाला पै राखे ओ राजा राम माया फेरी, काड खड़ग काल पै कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राख। पीत पितांबर त्रि पवन तनी थंब माहे हर पाख, हर नाकसो जिन नख बिदारियो सुर नर किए सनाथा। कह नाम देव हम नर हर त्यावै राम अप है पददाता। सुल्तान पूछे सुन बे नामा देखो राम तुम्हारे कमा, नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेरा हर बीठला। रहाओ बिस्मिल गऊ देहो जी आए नातर गर्दन मारो उठाए, बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवे कोए। मेरा किया कछु ना होए कर है राम होए है सोए, बादशाह हो चढ़े अहंकार गज हस्ती दिनो चमकार। रुदन करे ना मैं की माए छोड़ राम की ना पजा खुदाए, ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। पिंड पड़े तो हर गुण गाए करे गजेंद सुंड की चोट, ना माय उबरे हर की ओट। काजी मुल्ला करे सलाम इन हिंदू मेरा मलिया मान, बादशाह बेनती सुने हो नामे सर पर सोना ले हो। माल ले हो तो दोजक परो तीन छोड़ दुनिया को परो, पावो बेड़ी हाथो तालो नामा गावे गुण गोपाल। गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह, सात कड़ी जा बीती सुनी अजो ना आयो त्रिपवन तनी। पाखंतन बाज बजाएला गर चढ़े गोविंद आएला, अपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल। कह ता तरन एक ओडी करो कह ता लेकर ऊपर तरो, कहे ता मुई गऊ देव जी आए सब कोई देखे पति आए। नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल, दूध दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी। बादशाह महल में जाए औ कटकी कट लगी आए, काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए।
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹੋ ਕਿਛ ਪਤੀਆ ਮੁਜੈ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਸਾਚ ਸੀਲ ਚੱਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਸਭ ਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੋ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਗਾਏ, ਤਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਏ। ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾਲੇ ਉਧਰਿਆ ਪਾਰ, ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਮੁਰਾਰ, ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪਾਰ, ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ, ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਝੂਠ ਝੂਠ ਅਣ ਸਭ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੈ, ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਦੇ ਦਿਸਤਾਵੈ,

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो सब मिटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करन हार, ई तूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओ अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोविंद नित रसन गाए।

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावै जिसनो तू रंग धरता। तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा। तेरा महला गोचर मेरे प्यारे बिखम तेरा है पाणा, कहो नानक टह पया द्वारा रख ले वो मुकद्या जाना। बसंत हिंडोल महला पंजवां, मूल ना बुझै अपना सूजै, भरम व्यापी अहमनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी। मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभ ते होवे ए बिचारी हर जनी। नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी। आवरियो पाओ ना को सूजै, नानक तरिये गुरबचनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नावा। साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पीतर जो राम बस्त है साचो ताहे पछानो रहाओ। एहो जग है संपत सुपने की, देह का ऐडानो, संग तिहार है कछु ना चल है ताहे कहां लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण एक पुरख भगवानो। बसंत महला नावा।

जोगी जंगम अरसन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए। बसंत महला नावा माई मैं तन पायो हर नाम। मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया। तृष्णा सगल बिनासी मन ते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निद सो गोविंद गुण गावै। कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम। तन बिनसै जम स्यों पर काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार। तन दारा संपत ग्रह कै संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग। बसंत महला नावा कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग। कश बिगड़ो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत। बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीत अनीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर। मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए। जो किश कीनस प्रभर जाए पै माने निरपो मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्यास निवास। गुर शब्दी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे। गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए। अत लुब्ध लुबानो बिखुमाए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए। गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवरतार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यो फासस काम हार कड़बंधन बांध्यो सी समार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। ता कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले ना जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख
ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ। ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਨ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਸਮੈ ਏਕੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਮਤ ਅਗਾਹੇ। ਤੂੰ ਮੋਟੋ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨਰ ਹੋਏ, ਇਕ ਤਰਾ ਚੈ ਪਰ ਹਰ ਦੋਏ। ਦੂਰ ਦਰਦ ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਏਕ ਸਮਾਏ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਏ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਰਹਾਓ ਬੇਦ ਵਖਾਣ ਕਹੈ ਇਕ ਕਹੀਐ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਕਿਨ ਲਹੀਐ। ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨ ਜਾ ਕੀਆ, ਬਾਜ ਕਲਾ ਧਰ ਗਗਨ ਧਰੀਆ। ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਜੁਗ ਸੋਈ। ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਲਖ ਅਪਾਰ।

तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम सुआद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बा। बसंत हिंडोल महला पहला, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार, कर महलत चार बहाली, चारे दीवे चौ हथ दिए एका एका वारी, मेहरवान मधसूदन माधव, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ, घर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी, धरती देख मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी, नासा बूर होवे फिर मंगे, नारद करे खुवारी, लाभां देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी, पूंजी मार पवे नित मुदगर, पाप करे कोटवारी, पावे चंगा पावे मंदा, जैसी नजर तुम्हारी, आदि पुरख को अल्लाह कही है, सेखा आई वारी, देवन देवत्या कर लागा, ऐसी कीर्त चाली, कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी, घर घर मियां सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी, जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिफ तुम्हारी, तीर्थ सिमरत पुन दान, किशलाह मिलै दिहाड़ी, नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली, बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अन क्यों पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक एक घर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाई है, भज राम नाम निशान रहाओ, एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमती कर पाया, दीना दीन दयाल पे है, जो कृष्ण बिद्र कर आया, मिल्यो सुदामा भावनी तार, सब किश आगे दालत पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आप रखाई, जे सब सागत करे बखिली, एक रत्ती तिल ना कटाई, जन की उसत है राम नामा, दे दे सोभा पाई, निंदक साकत खब ना सकै तिलो, अपने कर लू की लाई, जन को जन मेर सोभा पावे, गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवे दासन दासा, आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावे, नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जल समावे, बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुगिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कहे एक बार, बाल्मीक होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संतां जाचो चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ, गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, बिपर सदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद, बदक उदारो खम परहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट तार, पिदर उदारो दास्त पाए, रे मन तू पी हर ते आए, प्रहलाद रखी हर पैज आप, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेव्यांत बार,
ਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਾਰ, ਧੰਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਰਮਿਲ ਪਈ ਸਿੱਧ। ਬੇਣੀ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰਮੇਵ, ਨਾਈ ਉਦਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ। ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਤਰਸੈ ਸਰਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਾ ਨਗਰੋ ਠਾਕਰ ਕੀਓ ਆਪ, ਸੇ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖ। ਤਿਨਕਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਏ, ਇਹ ਬਿਧ ਦੇਖ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੈ ਸੰਗ। ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਜੋ ਨ ਮਾਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਹੇ, ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਜਮ ਦੇਤ ਡੰਡ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੀਤ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਰਹਾਓ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ, ਤੂੰ ਬਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एहरुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुण ना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम ते आएंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन ते आयन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाऊ तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यों कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हास्ता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख देहो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडै मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्योर साए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थम ते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेदियो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂ ਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

आया पहगे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे, इंद्री की जूठ उत्तर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर ते नर सूचे साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांगो, कह चंदन चोवा बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान, वेद पुराण सब देखे जोए, ऊहा तव जाइए जो इहा ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिगल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै लोग हसै, चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोभ लहर अत निजर बजे काया डूबे केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाओ तेरा पार ना पाया बीठला हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा नामा कह हों तार पी ना जाना मोको बहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हागती जैसे पनकत थ्रू टिट हागती सर तोवन चाली लाडली रहाओ तोबी तोवे बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देओ रम रहे अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भ बावली जैसे पांदव खूंब राज तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद तन सुगंध ढूंढे परदेस आप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुवार पुत्र कलत्र का करे हंकार उठाकर लेखा मंगनहार फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकारे पियो पियो साधु की जौ लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के

गिरयो जाय रसातल परयो छिटी छिटी सिर पहारै निर्वैरै संग वैर रचाय पहुँच न सकै गवारै कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है। सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सुधाखर जाकै हृदय वसिया तिन बेदै तत् पछानिया रहाओ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोक पिचारा जौ लौरदै नहीं प्रगासा तौ लोवंद अंधारा जैसे धरती साधै बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना होई है तुटै नाही अभिमानै नीर बिलोवै अत श्रम पावै नैनू कैसे रीसै बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत है बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जाकै लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कहिया सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाशत फल लहिया रहाओ आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभ अबनासी अनाथ नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड भागे कल कलेस मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई है उपदेश हमारी गत करन रहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवै हर संत सरण आप जपै अवरै नाम जपावै वड़ समर्थ तारन तरन जा को मंत्र उतारै सहसा ऊने को सुभर भरन हर दासन की आग्या मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म वरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसै गाने सह समाने मुक्ते नाही जात बरन गुरप्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुणित मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जौ गोपाल रिजायो रहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगत दर्श देख नैन रंगा लोभ मोह टूटे परम संगा कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परमानंदा सारंग महला पंजवा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद कैसे कहो मोहे जी बेदनाई दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर मन ना रह बहुबिद उमकाई रहाओ चितवन चितवो प्रे प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो इहो मन नहीं तीरै कु हैरे संत मिलाई जप तप संजम पुन सब होमो ते सरपो सब सुख जाई एक निमख प्रे दर्श दिखावै ते संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती से बोधन रहनाई मान अवमान हो सगल त्यागों जो परे बात सुनाई देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई प्रभ रंग दयाल मोहे गृह मैं पाया जन नानक तप्त बुझाई सारंग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलबाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अंठाही करै बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुस माही धर्म राय जब पगरस बवरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लेखा

काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट पर है अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिलो, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवा, सूरदास एको अंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्पयो, आनंद सहज धुन चोक, रहाओ दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यो काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो कुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिनो कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का, रहाओ आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो, रहाओ तुदनो सेव है, तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावै से मृत पावै, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वरे आन मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना, रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार भई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्म जन्म गवाया, मन पावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया, रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहा तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निद ठाकर नवनिद नाम समाए रहाओ, अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राए, दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंतर रंगीला पाया फिर दुख ना लाग आए, मलार महला पंजवा खीरा दार बारक जब होता बिन खीरा रहन ना जाई, सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई, हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निद नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी, पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना, मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया तजो सगला देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा, सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ, मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोज खोज मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाय, जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पहे सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पहे आनंदा गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे, मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनक बार प्रमै बो जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ, त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघै कथ सागर बिरथा कथत हम तरते, सेव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन

प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार, हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार, अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाह, बिन पिर नींद न पाई, सूर चरै प्रयो देखै नैनी, निम निम लागै पाई, फिर पावै प्रेम सिखाई, तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा, ऐसी प्यास तसाई रहाओ। सरवर कमल किरण आकाशी, बिकसै सहि सुभाई, प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो ओटेरै, बिलप करे बिल लाई, कन हर कोर दसो दिस बरसै, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई, खिन तिल रह न सकै पल जन बिन, मरन जीवन तिस ताई। तन वांडी पिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई, गुण संग्रह प्रभृदय निवासी, भगत रति हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती, गुर पावै प्रयो पाई, प्रयो नाले सद ही सच संगे, नदरी मेर मिलाई। सब मैं जियो जियो है सोई, घट घट रहा समाई, गुर प्रसाद कर ही परगासिया, सहजे सहि समाई। अपना काज सवारो आपे, सुखदाते गोसाई, गुर प्रसाद कर ही पिर पाया, तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा, बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे, आच काच ढर पाही। इस तन तन का कहो गर्भ कैसा, बिनस्त बार न लागे बवरे, हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे, राखे परखे सोई, जेती है तेती तुझ ही ते, तुम सरेवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी, आपे गुरमुख अंजन, अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा, काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो, रंगन चिहन चतराई, नानी सी बूंद पवन पत खोवै, जन मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर, सरपन कर कर माही, उल्टी नदी कहां कर तरवर, सरपन डसै दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी, मन तन हेम पय सच पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै, तू सर्ब जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत रखो, साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै, बदक कर्म कमावै, सतगुर मिलै ता सूजस बूजस, सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देह साच बिन साची, निर्गुण देह साच बिन काची, मैं पूछो गुर अपना, नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै, बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला, चात्र कमीन जल ही ते सुख पावै, सारंग शब्द सुहाई, रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ। प्रे स्यों प्रीत ना उल्टै कबहू, जोतै पावै साई, नींद गई हम मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा, पीवा नाम सुभाई, लोचन तार ललता बिललाती, दर्शन प्यास रिजाई। प्रे बिन सिंगार करी, तेता तन तापै, कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सकाऊं,
ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਿਰ ਨਜੀਕ ਪਿਰ ਨਜੀਕ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬੱਪੜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੁਈ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਖਲੀ

रहाओ सतगुर सबदी पादर जान गुर कह तकिय सच तान नाम समार सरूड़ी बाण थै पावे दरले स्पिराण ऊंडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना उची तार निज करवासा तह मगना चल नहार जित कर वसै तू है बिद जाने बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दग ब्याशा पै करण पलाव करै बिल लातो बिन गुर नाम ना जापै पल पंकज मैं नाम छडाए जे गुर शब्द सिंपै एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मुख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी इंद वरसै तरत सुहावी कट कट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे बांधा कार कमाए एक शब्द राचै सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दिसै सिर उबो खुदया निंद्रा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जानै कंठे बैठी गुर शब्द पछानै तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जा चर दै समाल रहाओ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्व जी किए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत पारी ऊंडना सांकै पंख पसारी रस चूगै मन मुख गावार फाती छूटै गुण ज्ञान विचार सतगुर सेव टूटै जमकाल हृदय साचा शब्द संभाल गुरमत साची।

सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पांच सह दाना खाए, डके फूके केहे उड़ावे, साहे गए पछताए। अंधी फूक मुई देवानी, खस मिट्टी फिर पानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल्लाए। खस में पावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। सकता सी हो मारे सह मेरे आ, सब पिछे पै खाए, ओहे सताना कुरे न मावे, सहे गए पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे, खसमे मूल न पावे, अक्स्यो प्रीत करे अक तिड्डा, अक डाली बै खाए। खसमे पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीते दुख होई, गल्लां वाले हैन करेरे, छड़ न सके कोई। मक्खी मिठे मरना, जिन तू रखे तिन नेड़ न आवे, तिन पौ सागर तरना। पौड़ी अगमा गोचर तू तनी, सच्चा लख्या पार, तू दाता संमंग ते को देवनहार। जिनी सेव्या तिनी सुख पाया, गुरमति विचार, इकना नो तुद एवै भावदा, माया नाल प्यार। गुर कै शब्द पसलाही है, अंतर प्रेम प्यार, विण प्रीति भगत न हो वई, विण सतगुर न लगै प्यार। तू प्रभ सब तुद सेवंदे, इक ढाडी करे पुकार, देह दान संतोखिया, सच्चा नाम मिले आधार। सलोक महला पहला, राती काल कटै दिन काल, छिजै काया होए पराल। वर्तन वर्तया सर्ब जंजाल, पुल्या चुक गया तबताल। अंधा चख चख पया चेर, पिछे रोवे लियावे फेर। बिन बूझे के सूझे नाही, मोया रोहे रोंदे मर जाही। नानक खसमे वै भावे, सही मुए जिन चित ना आवे। महला पहला, मुआ प्यार प्रीत मुई, मुआ वैरवादी वन गया रूप विनसिया। दुखी देह रली, कितों आया कह गया, केहो ना सीओ केहो सी, मनमुख गल्ला गोईया, कीता चौरली। नानक सच्चे नाम बिन, सिर खुर पत पाटी पौड़ी। अमृत नाम सदा सुखदाता, अंते हुए सखाई। बाज गुरु जगत बौराना, नावे सार ना पाई। सतगुर सेवै से प्रवान, जिन ज्योति ज्योत मिलाई। सो साहेब सो सेवक तेहा, जिस पाणा मन वसाई। आपणे पाणे कहो किन सुख पाया, अंधा अंध कमाई। बिखिया कदे ही रजै नाही, मूर्ख भुख न जाई। दूजै सब को लग विगुता, बिन सतगुर बूझ ना पाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाई। सलोक महला पहला, सर्म धर्म दोए नानका, जे तन पल्लै पाए, सो तन मित्र ना कांडियै। जित सिर चोटा खाए, जिनकै पल्लै धन वसै, तिनका नौ फकीर। जिनकै हृदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए ता लगै दुख। नानक सच्चे नाम बिन, किसै न लथी भुख। रूपी भुख न उतरै, जा देखा ता भुख। जे तेरा शरीर के, ते लगै दुख। महला पहला, अंधी कमी अंध मन, मन अंधै तन अंध, चिकड़ लाया क्या थी है, जा टुटै पत्थर बंद। बंद टुटा बेड़ी नहीं, ना तुलहा ना हाथ, नानक सच्चे नामिण, केते डुबे साथ। महला पहला, लख मन सोयना, लख मन रूपा, लख साहा सिर शाह, लख लश्कर लख वाजे नेजे, लखी कोड़ी पातशाह। जिथे सायर लंघना, अगन पानी असगा, कंधी दिस न आवई, ताही पवे कहा। नानक उथे जानिए, साहा के पातशाह। पौड़ी, एक ना गली जंजीर, बंदर बाणी है, बदे छुट्टे सच, सच पछाणी है। लिखिया पल्लै पाए,
ਸੋ ਸੱਚ ਜਾਣੀਐ ਹੁਕਮੀ ਹੋਏ ਨਿਬੇੜ ਗਿਆ ਜਾਣੀਐ ਪਾਉ ਜਲ ਤਾਰਨਹਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਚੋਰ ਯਾਰ ਚੂਆਰ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀਐ ਨਿੰਦਕ ਲਾਏ ਤਬਾਰ ਮਿਲੇ ਹੜਵਾਣੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਨਾਉ ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਏ ਵੈ ਕਰੈ ਗੁਆਓ ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਕਲ ਕਾ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਏ ਨੋ ਅੱਗੇ ਨਾਹੀ ਥਾਓ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਓ ਔਰ ਆਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਏ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਭਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚੱਟ ਜਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਹੋ ਸੀ ਸਾਰ ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਏ ਤਬਾਰ ਪੌੜੀ ਆਪ ਪਾਏ ਮੇਦਰੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ਪੈ ਬਿਨ ਪਰਮ ਨਾ ਕੱਟੀਐ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਭੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰ ਭੈ ਤੇ ਭੈ ਜਲ ਲੰਘੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਮਨਮੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਤੇ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਉਰ ਧਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ ਭੁੱਖੈ ਸਾਦੈ ਗੰਡ ਲੱਭੈ ਮਾਲੈ ਘੁਲ ਮਿਚਲ ਲੱਭੈ ਮਾਲੈ ਘੁਲ ਮਿਲ ਮਿਚਲ ਉਂਘੈ ਸੋੜ ਪਲੰਘ ਪਉਕੈ

मासो ही मासी उपजै मासो सबो साक सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया ताको आवै रास आप छुटे न छुटी है नानक बचन विनाश महला पहला मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंडा मार होम जग किए देवत्यां की बाणे मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए कहे न कहे आबूजे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस ना खाही स्त्री पुरख है जानिस मेला उथे मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासै के पांडे ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वह पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा अपख पख पख तज छोड़ अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासै के पांडे ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही चतर कहा वै पांडे मास पुराणी मास कते भी चह युग मास कमाना जज काज भी आहे सुहावै उथे मास समाना स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लैना देंदा नरक सुर्ग लैंदे देखो एह तिंगाना आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा पांडे तू जाने ही नाही किथों मास्यो पन्ना तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिपवन गन्ना तोवा आखे हाँ बो बिधाचा तो वै बहुत बेकारा एते रस छोड़ हो वै सन्यासी नानक कह विचारा पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्ही पाया सच्चा शब्द विचार से तुझी वाय समाया एक भगवा वेस्कर परम देवन सतगुर कने ना पाया दे दिसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द तन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा नानक दुनिया किया वड़ियाइया अग्गी से तीजाल इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चढ़िया नचसी सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पखसी फाथा चुगै चोग हुक्मी छुटसी करता करे सहोग कून निखुटसी सलोक महला पहला घर मैं घर दे खाए दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजै शब्द निशान दीप लो पाताल तहै खंड मंडल हैरान तार कोर बाजंतर तहै साज तख्त सुल्तान सुख मन कै कर राग सुन सुन मंडल लिव लाए कथ कथा बिचारी है मनसा मन समाए उल्ट कमल अमृत भरिया एहो मन कतो न जाए अजप्पा जापना विसरे आज जुगा समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास
ਸ਼ਬਦ ਖੋਜਿਓ ਕਰ ਲਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚਿਲ ਮਿਲ ਬਿਸਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਕਾਲੂਬ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨਾ ਮਾਨੀ ਮਨ ਕਮੀਨ ਕੰਮ ਤਰੀਨ ਤੂੰ ਦਰੀਆ ਓ ਖੁਦਾਇਆ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਜੈ ਦੇਹ ਅਵਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ਹਿਕਮਤ ਖੁਦਾਇਆ ਮਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਚਲਤ ਚਲਤ ਵਖਾਣਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।

लोग प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटुंब के ढेड सब ढोर ढोवंत फिरै अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तनै रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत साध संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लो धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो झूठे बनज उठी गई हट्यो कहो रविदास।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जा को भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मेल पज राम, बड़ हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईए हर ब्रह्म जोग हर पाईए, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू परपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चित बेकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यों शोहे पारस मनूर पहे कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुध हादो, ज्यों काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार बरन चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरह कुर सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावे एक मन एक चित, ते साधु सुख पावे, पज हर हर नाम निधान, उस्त कर है प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे, ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर

नहीं सब पला ही है रे, हार नहीं सब जेता है, सोग नहीं सदा हर की है रे, छोड़ नहीं किस लेता है। कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमत है, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत पए तेह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गह रहे अटकाए, अनक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम हो माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बिनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवनो, नाम हमारे प्राणाधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इशनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल बिखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ ला

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा महला पंजवा बिखे दल संतन तुमरे गायो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन पेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सह समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरे बिन सह मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साज जना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोष प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तहावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अविनाशी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहं मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाह गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोयत खोयत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराद गुर सतगुर चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगते उदारण नाम प्रे तेरे नवनिद नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोरै
किछ संग ना चालै लाख करोरै, प्रभ जी को नाम अंत पकरोरै, मनसा मान।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ आओ तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ, बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख हर नंगा, पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खा टंगा, दर्शन पेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा, हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा, सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो, हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ, जैसी करी प्रभ मोसियो ऐसी हों कैसे कराऊं, हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी, सोई मिलियो जो भाव तो जन नानक ठाक रहो समाए, एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवा, कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्यागी है गुमान मान पेखता दयाल लाल, हां हां मन चरण रेन रहाओ, हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवां, प्रभ कहन मलन दहन लहन गुर मिले, आन नहीं उपाओ रहाओ, तटन खटन जटन होमन नाही डंड धार सुवाओ, जतन पांतन तपन भ्रमन अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ, सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवां, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पतत पावन भगत पवछल पै हरन तारन तरन रहाओ, नैन तिबते दर्श पेख जस तोख सुनत करन, प्राण नाथ या नाथ दाते दीन गोबिंद सरन, आस पूर्ण दुख बिनासन गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवा, चरण सरण दयाल ठाकर आन नाही जाए, पतत पावन बिरद स्वामी उधर ते हर त्याए रहाओ, संसार गार बेकार सागर पतत मोह मान अंध, बिकल माया संग तंद कर गह प्रभ आप काढ़ो, राख लियो गोबिंद राए, अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप विनाश, मन दर्शने की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवां, वार वारो अनक डारो सुख प्रे सुहाग, पल करात रहाओ, कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इन स्यों तात, मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवा, अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ,
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਓ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਓ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨ ਆਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਓ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜੋ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो कोई मिले प्रभु मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभु तुमरे, जन नानक के प्रभु समरथ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम त्यावे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैं मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल विख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

रस रसक घटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर यत फीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जानी के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जानी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागरे अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझे अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रब कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक त्रापियो तन सुख होए, प्रभाती महला पहला। अंतर देख शब्द मन मानिया, अवरना रंग नहारा, एनस जिया देख समाले, तिस ही की सरकारा, मेरा प्रभ रांकण अतरूढ़ो, दीन दयाल प्रीत मन मोहन, आतरस लाल सगूढ़ो, रहाओ ऊपर कूप गगन पनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सोबित जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा, पसरी किरण रस कमल बेगासे, सस्कर सूर समाया, काल विध्वंस मनसा मन मारी, गुर प्रसाद प्रपाया, आत रस रंग चलू लै राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसन रसाए राते, रव रया प्रभ सोई। प्रभाती महला पहला। बारह मैं रावल खप जावे, चौछे मैं सन्यासी, जोगी कापड़िया सिर खूथे, बिन शब्द है गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हठ हस्त मैं पीख्या जाची, एक भाए लिवलागी, रहाओ ब्राह्मणवाद पढ़े कर किरिया, करनी कर्म कराए, बिन बूझे किछ सूझे नाही, मनमुख विछड़ दुख पाए, शब्द मिले से सुचाचारी, साची दर गए माने, अन दिन नाम रतन लिव लागे, जो जुग साज समाने, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द वसे, नानक सतगुर मिले मिलाया, दुख प्राहित काल नसे, प्रभाती महला पहला। संतां की रेण साध जन संगत, हर कीर्त तरतारी, कहां करे बपरा जम डर पै, गुरमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना, रहाओ गुर उपदेश साच सुख जा कहो, क्या तिस उपमा कही है, लाल जवेहर रतन पदार्थ, खोजत गुरमुख लही है, चीने ज्ञान ध्यान तन साचो, एक शब्द लिव लावे, निरालंब निरहार निह केवल, निरपव ताड़ी लावे, सायर शब्द भरे जल निर्मल, उल्टी नाम तरावे, बाहर जातो ठाक रहावे, गुरमुख सहि समावे, सो गिरही सो दासो दासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साच शब्द मन मानिया। राग प्रभाती महला तीजा, चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, गुरमुख विरला कोई बूझे, शब्दे रहया समाई, नाम रते सदा सुख पावे, सच रह लिवलाई, हर हर नाम जपो जन पाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, अंदन हरस रहया अगाई, रहाओ अन दिन भगत करो दिन राती, इस जुग का लाहा पाई, सदा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चितलाई, सुख सिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अखुट भंडार भरे, कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम त्याय सदा तू, सतगुर दिया दिखाई। प्रभाती महला तीजा, निर्गुणी आरे को बख्श लै स्वामी, आपे लहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सबदे देहो बुझाई, हार जियो तुद विटो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे रखो, सदा रहा सरनाई, रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो देह वड़ियाई, पूरे गुरते पाना जापै, अंदन सहि समाई, तेरे पाने भगत जे तुद पावै, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर तृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे, करते अवरना करना जाई, नानक नामे जेवड़े अवरना दाता, पूरे गुरते पाई,
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਸਾ ਲਹਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤਿੰਨ ਸਲਾਏ ਹਰ ਜਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਈ ਤੂੰ ਜਪੀ ਤੁਦੈ ਸਾ ਲਾਹੀ ਗਤ ਮਤ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾ ਲਾਹਨ ਸੇ ਸਾਧ ਪਾਇਨ ਮੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਸਦਾ ਮੀਠਾ ਕਦੇ ਨਾ ਫੀਕਾ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਸਚ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਤੋ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜੈ ਨਾ ਕੋ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਗ

जो तेरी शरण आई हर जियो, तिन की करें प्रतपाल। आप कृपा कर रखो हर जियो, पोहे ना सके जमकाल। तेरी शरण आई सच्ची हर जियो, ना यो कटे ना जाए। जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जमे तै मर जाए। जो तेरी शरण आई हर जियो, तिन्ना दुख भू किश नाहे। नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चे शब्द समाहे। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आवो। जब लग जी परान, गुर शब्दी मन निर्मल होवा। चूका मन अवमान, सफल जन्म तिस प्राणी केरा। हर कै नाम समान, मेरे मन गुर की सिख सुनी जय। हर का नाम सदा सुखदाता, सहजे हर रस पी जय। रहाओ मूल पछाण, तिन निज कर वासा। सहजे ही सुख होई, गुर कै शब्द कमल पर गासिया। हो मैं दुर्मत खोई, सब ना मैं एको सच वरतै। विरला बुझै कोई, गुरमति मन निर्मल होवा। अमृत तत्व खानै, हर का नाम सदा मन वसिया। विच मन ही मन मानै, सद बलिहारी गुर अपने। विटौ जित आत्म राम पछानै। मानस जन्म सतगुरु ना सेविया, बिरथा जन्म गवाया। नदर करे ता सतगुर मेले, सहजे सही समाया। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे भगत आया। प्रभाती महला तीजा, आपे पांत बनाए बहुरंगी। सिष्टियो पाए प्रभ खेल किया। कर कर वेखै करे कराए, सर्ब जियां नो रिजक दिया। कली काल में रवे आराम, कड़कड़ पूर रहा प्रभ एको। गुरमुख प्रगट हर हर नाम, रहाओ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग। कटकट हर भरपूर रहया, नाम रतन तिन्हा हिरदै प्रगटिया। जो गुर सरनाई पज पया, इंद्री पंच पंचे वसे आणै। खिमा संतोख गुरमत पावै, सो तन तन हर जन वड पूरा। जो पै बै राग हर गुण गावै, गुर ते मोह फेरे जे कोई। गुर का कहया ना चित तरै, कार्याचार बहु संपो संचय। जो किश करै सो नरक परै। एको शब्द एको प्रभ वरतै, सब एक स्ते उत्पत चलै। नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रलै। प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सा लाहे। पूरा भाग हुआ मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे। रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विर ला ले। जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माहे वसाए। दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे साचा ले मिलाए। गुर की बाणी सो लाए प्यार, व्यथ उथै हो आधार। आपे देवै सृजनहार, सच्चा मनाए अपना पाणा। सोई भगत सुगड़ सुजाणा, नानक तिसकै सतगुरबाणा। प्रभाती महला चौथा, विभास एक ओंकार। सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावै, गुरमत लिव उन्मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुरबान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हरी उतमरे दे अंतर पायो। गुरमंत दियो हर कान, रहाओ आवो संत मिलो मेरे पाई। मिल हर हर नाम वखान, कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना। मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसिया। मिल संगत हर गुण जान, वड्डे भाग सत संगत पाई। गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावै प्रभ अगम ठाकुर के। गुण गाए रहे हैरान, जन नानक कहो गुर कृपा तारी। हर नाम दियो खिन दान, प्रभाती महला चौथा। उगवै सूर गुरमुख हर बोलै, सब रहन संभालै हर गाल। हमरै प्रभ हम लोच लगाई।
हम करह प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर रवाल। हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पग चारो हम बाल रहाओ। साकत कहो दिन रहन अंधारी, मोहे फाथे माया जाल। खिन पल हर प्रभु हृदय न वस्यो, रिन बांधे बहु बिदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हो छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना, गुरु किए शब्द निहाल। हम बारक गुर अगम गोसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुबदे काढ लिहो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसक रसीक। गावत सुनत दो पहे मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर नाम, मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक। गुरमत नाम शीतल जल पाया, गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी। तिन्ना मस्तक उजल टीक, हर जन सोभा सब जग उपर। ज्यो विच उड़वा ससकीक, जिन हर हृदय नाम न वस्यो। तिन सब कारज फीक, जैसे सिंगार करै देह मानुख। नाम बिना नगटे नक कीक, कट कट रमैया रमत राम राय। सब वरतै समयीक, जन नानक कव हर कृपा तारी। गुर बचन ते आयो करी मीक, प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ तारी, मुख हर हर नाम कहे। पतत पावन हर नाम ते आयो, सब किल विख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, काया नगर नगर हर बसयो। मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगटयो। कर मंदिर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उदयाने। ते सागत मूड मोहे, ज्यो मृग नाव बसै बास बसना। प्रम प्रमयो चार गहे, तो वड़े अगम अगाध बोध प्रभ। मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक कहो गुर हाथ सिर तरयो। हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा। सतगुर बचन सुखाने ही अर, हर तारी हर प्रभ कृपफा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा। हर हर

जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुबदे बहदे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा, उपजंपो पाए न पाइए कतहू। गुरपुर हर प्रभ लभ रहाओ, राम नाम रस राम रसायण। रस पिया गुरमत रसबा, लोह मनूर कंचन मिर संगत। हर उर तारियो गुर हरबा, हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने। पुत कलत मोहे लुभबा, तिन पग संतन सेवे कभू। ते मनमुख पूंबर परबा, तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो। हम परे हार तुम सरन बा, ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी। जन नानक दास तुम नवा शकायक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मानो हर हर नाम निधान, हर दरगह पावे मान। जिन जपया ते पार प्राण रहाओ, सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान, सुन मन गुरमुख पावे मान। जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कोटान। मिल नानक हर भगवान, प्रभाती महला पंजवा विभास। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा तरत बर्तन कौ पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हर सोग ते रह निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत, सो हर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जै कोय ना होवै, कोट अपराध एक खिन में तोवै। दात करे नहीं पछोतावै, एका बख्स फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल, साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की सोबा। काम क्रोध मिटे तसलोबा, नाम तेरा जन कै पंडार। गुण गावे प्रभ दर्श प्यार, तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई। काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग, तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन, पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए, अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार, जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद। आठ पैर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कलमल जाहे। तिस गुर की हम चरनी पाहे, सुमत देवो संत प्यारे। सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया, जिस प्रसाद मुहै नहीं माया। हालत पलत जिन गुरै सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव, वड्डे पाग पाइए हर सेव। प्रभाती महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए। अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए। सगला दुर्त मिटाया, हम बारक

प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की व्यर्था मन ही जानै कह बूझ लिया गै कहिए, अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चहिए। बेदी अले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवैया सरबेठाई रहाओ। मन है हाट मन है पाट मन है पासारी, मन है बस है नाना पेदी परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता दुबदा सह समाणी, सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपो समत विचारी। जो जन जान भजै पुरखोत्म ताची अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताँ का अंत न जानिया, सर्ब निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बाने बिखे बासते सुख लागला, सर्बे आद परमलाद काहट चंदन पहले। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पहला, तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभे ओ, आप ही करता बीठल देओ। जी का बंधन कर्म व्यापै, जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लह, अमर होए सद आकुल रह। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तलकाती, ठग दिष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद च रामं क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग रहाओ। नित प्रत इशनान श्रीरंग दोय धोती कर्म मुख खीरंग, हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागत निस जागस भगत परवेशं, पग नाचस चित अकर्मं एलम पट नाच धर्मं। मृग आसन तुलसी माला कर उज्जल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रेलम पट कृष्ण अपाखं। जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नवा, राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान, बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जहै तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले, अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा, रे मन कौन गत होए है तेरी,
ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਭਾਨ ਮਤ ਨਾਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਓ ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਖ ਕੀਨ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਪਗਹ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ ਸਿਮਰਤ ਨਹੇ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਬੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨੈ ਰੇ ਅਜਾਨ ਕਾਲ ਤਉ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜਹ ਭਾਜ ਰੇ ਰਹਾਓ ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨ

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते, सहनशील संतंग सम्मित्रस दुर्जन, नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान भंगन, शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन, गोविंद नाम जपंत मिल साध संग, नानक से प्राणी सुख बसन, सैना साध समूह सूरा जितंग सन्ना हम तन्य मरता, आवदे गुण गोविंद रमणंग ओट गुर शब्द कर चरमण, आरूढ़ ते अश्वरथ नाग बुजंते प्रमार ग, विचरते निरपयंग सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन, जितते विश्व संसार नानक वस्यंग क्रोध पै तस्कर, मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग द्रुम छाया रच दुर्मत, ततः कुटांब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम, नच विद्या निदान निगमंग नच गुणग नाम कीर्तन, नच राग रतन कंठंग नह चंचल चतर चतर, भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित, कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी, जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी, गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन, कुकर सुकर गर्भ दय काक सर्पन तुल खल, चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण, कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन, नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन, नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर, नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव, नच दुर्लभंग बंता बिलास, नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतर चंचल, दुर्लभंग एक भगवान नाम नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभंग, जत कत तत दृष्टंग स्वर्ग मर्त पयाल लोक, सर्वत्र रमण गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्यते, बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सखा स्वजन, दुखंग पयंत सुखयंग पह पी पंत निर्भय, थान बिहून विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुर, सर्वशील ममंगशीलंग सर्व पावन मम पावन, सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्यते, नह शीतलंग चंद्र देव नह शीतलंग बामन चंदन, नह शीतलंग शीतरुतेण नानक शीतलंग सास्वजन, मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण, ज्ञानंग सम दुख सुखंग युक्त निर्मल निर्वैरण, दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित, भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अल्प माया जल कमल रहित, उपदेशंग सम्मित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी, पर निंदा न स्रोत श्रवणंग आप त्याग सगल रेण कै, खट लखन पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध स्वजन, अजा पोगंत कंद मूलंग बसंते समीप केहर, तत्रगते संसार नानक सोग हरखंग व्यापते, छलंग शिद्रंग कोट बेगनंग अपराधंग किल बिखमलंग, परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग, मृत्यु जन्म प्रमंत नरक अनक उपावंग न सिद्ध्यते, निर्मलंग साध संग है जपंत नानक गोपाल नामंग, अरमंत गुण गोविंद नित प्रत,
तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करणं सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है।

पंखी बेमोह है, हर कर्ण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर है। हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी परमावण है, चित हरणंग त्रै लोक गम्यंग जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है, तव पै बिमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण। हे काल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते, बिखयंत जीवं वस्यं करोत निरत्यं क्रोत जथा मरकटै, अनक शासन ताड़ंत जमदूतै तव संगे अदमं नरै, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत। हे लोबा लंपट संग सिर मोरै, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं, अनक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव, नच मात पिता तव लज्जिया अकरण क्रोत अखाद खाद्यंग असाजिंग साज समझिया। त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है, हे जन मरण मूलंग हे जन मरण मूलंग अहंकारं पापात्मा, मित्रंग तजंत सत्रंग दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है, आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण है, परम प्यान उद्यान रमणंग महाविकट असाध रोगण है, वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरो, हे संसार ताप हरण है करना मह सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल है दीना नाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल सरणंग रमणंग गोपाल कीर्तन है साध संगेण तरणंग, नानक महासागर पै दुत्तर है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मंग हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुतै, जैन कला तारियो आकाशंग बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग, जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियंग सासंग शरीर तारणंग, जैन कला मात गर्भ प्रतिपालंग नैछ जंत जठर रोगण, तेन कला अस्थम्भंग सरोवरंग नानक नैश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणंग सर्वत्र जीवन, लब्ध्यंग संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन, मस्कंग पगनंत सैलंग कर्दमंग तरंत पपील कै, सागरंग लंघंत पिंगंग तम प्रगास अंध कै, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। तिलकहीणंग जथा विपरा अमरहीणंग जथा राजन, आवदहीणंग जथा सूरा नानक धर्महीन तथा वैष्णव, न शंखंग न चक्रंग न गदा न श्यामंग आश्चर्य रूपंग अरहंत जन्मंग, नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद, बसंत साध हृदयंग अचत बुझंत नानक वट भागी है, उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान स्याल खरै, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर, हीत मोह पै परम परमणंग अहु फांस दीखण कठन, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंगन, पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरण कृपा, कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलियंग रोग खंडन, सा संगेण गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है, श्यामलंग मदर मानुखयंग हृदयंग पूं वैरण, निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग स्वंत स्वजन, अचेत मूडा ना जानंत कटंत सासा नित प्रतेश, जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते, हरिचंत पुरख है कुटंब लीला अनित आसा विख्या बिनोद, परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नानक करनामय। हे जहबे हे रसगे मदर प्रिया त्वयं सत हतंग परम बादंग अवर्त एथ सुध अक्षरण, गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतंग बलवंत।

सुंदर पुरख बराइत पेख मन बंचला, खोजो ताके चरण कहो कत पाई है, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है। नैन ना देखे साध से नैन बिहालिया, करन ना सुनही नाद करन मुंद कहलिया, रसना जपे नाम तिल तिल कर कटी है, हर हां जब बिसरे गोबिंद राय दिनो दिन कटी है। पंकज फाथे पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया, है कु ऐसा मीत जे तोरे बिखम गांठ, नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ, तावो दशा अनेक प्रेम प्रभ कारणे, पंच सतावै दूत कमन बिद मारणे, तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है, हर हां महा बिखादी कहात पूर्ण गुर पाई है। सदगुर की नीदात मूल नान खुट्टई, खावो पुंचो सब गुरमुख छुट्टई, अमृत नाम निदान दिता तो सहार, नानक सदा अराध कदे ना जाहे मर, जिथे जाए भगत सो थान सुहावना, सगले होए सुख हर नाम ते आवना, जी करन जयकार निंदक मोए पच, साजन मन आनंद नानक नाम जप, पावन पदत पुनीत कतै नहीं सेवी है, झूठे रंग खुआर कहां लग खेवी है, हर चंदौरी पेख काहे सुख मान्या, हर हां हां बलिहारी तिन जे दर गए जान्या, कीने कर्म अनेक गवार बेकार कहन, महा दुर्गंध तवास सठ का शार तन, फिर तो गर्भ गुबार मरन न जान, हर हां हर चंदौरी पेख काहे सच मान, जिसकी पूजै औद तिसे कौन राखई, वैदक अनप्यो पाव कहां लो पाखई, एको चेत गवार काज तेरे आवई, हर हां बिन्ना मैं तनशार बिरथा सब जावई, औखद नाम अपार अमोलक पीजई, मिल मिल खावै संत सगल कौ दीजई, जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे, हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावणे, वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया, जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरिया,

सम्मन जो इस प्रेम की दम के हो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जाप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनौ चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछ पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सबको कह बुरो न मन कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ ਜਰੇ।

करते हुए सो होए। कबीर वैष्णव की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर कर पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरै चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पे निदान सब जा पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होए कै उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै अहोई राख नार, गधी होए कै उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामु कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गोग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीसगी जग तो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सोए। कबीर जग बांधो जह जेवरी तेह मत बंदो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैना, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछर आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या कर है बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़ी है मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो की नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਿਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾ ਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋਂ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਇਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ

मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसु के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी परान। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आप पे दे, नानक सो सालाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुपिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारखे आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुभर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर थातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तुहे तो साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

काला मेंढा वेश गुन ही परया मैं फिरा लोक कह दरवेश तत्ती तो न पल्लवै जे जल टुबी दे फरीदा जोड़ो हगन रब दी चूरे दी चूरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोलना पिवै उडन संधि डंज हंस उडर कोदरै पया लोक विडारण जाए।

करै ते नर सह सह समप ते नर दुलीचे बह ते नर उथप बिथप सुख लह ते नर संसार में अपह पट रिप मद ते सक्याथ ते नर जालप भण गुर अमरदास सो प्रसन्न जेहे तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाण्यो नैन बैन मोहे एक एक दो ठाए ना जाण्यो सुपन एक प्रतख एक एक समय लीणो तीस एक अर पंज सिद्ध पैतीस ना खीणो एको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरण्यो गुरे अमरदास जल पणे तू एक लोड़े एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामै सम्माणी जे मत त्रिलोचन चित भगत कभी रह जानी रुक मांगत करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुरे अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुर अमरदास परसिय पोहम पातक बेनासै गुरे अमरदास परसिय से साधक आसासै गुरे अमरदास परसिय ध्यान लइए पौ मुके गुर अमरदास परसिय अपौ लब्बै गौ चुके है एक बिन दुगण जो तौ रह जा सुमंत्र मान मै लह जाल पा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहे हो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरण लिव रहे हो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण वखाणो जो गुण अलाख्या गम तिने गुण अंत न जाणो बोई थो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीर्त कहै त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जय कहते हैं परपूर सब दीपक दीपायो जे सिखै संग्रहयो तत हर चरण में लायो नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखै सरण परै ते उबरै छोड़ जमपुर की लिखै भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतारै गुर गौहर दरियाओ पलक डुबंत तारै नानक कुल निम्मल अवतरयो गुण करतारै उचरै गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परै चित चितवो अरदास कहो पर कह पह न सको सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हौ तको तेरे हुकुम पवै निशान तव करो साहेब की सेवा जब गुर देखै शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो गुर अमरदास कारण करण जिव तू रखै तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यो तत् मिलावै सच सच जानिए एक चित्तै लिवलावै काम क्रोध वस करै पवन उडंत न तहावै निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावै कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहै सहज रंग दर्शन दी।

वर्ष एक हों फिर ओ किने नौ पर चौल आयो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तै दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंथ न आवै रव संस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूरजन की आसा सतगुर से परम पद पायो अबनासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा भर भरे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा भर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा भर परे अन पौ उन्मान अकलिव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा भर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो निव निद नव निद नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तै जगतो धारण पायो
जगतो धारण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम्हू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख

ज्ञान अर ध्यान अनन पार जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चै कर जो गुरु गुरु अहनस जपै दास पट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मै तरै सो जन्म मरण दोथे रै गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखियो नहो कियो ते अक्यत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत तेहे नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पी उस पे वन की बंछत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो रस बासन से ओ जो दहंग दिस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुर की नी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सुवास जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाग सफारे करे आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै रसन अहनस रसै सत कर जानिया फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है ते आई है अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया बचन गुर रिद तरो पंच पू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानिया जाओ ता सब सुख इत्योत तुम बंछवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मंत्रो ध्यान अहनस करो।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थपे आओ, हर का नाम अखै निध अपियो, हर नाम अखै निध चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणंग, जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया, जस जन कै एक पड़े सुने गावै, प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਲ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾ ਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगणत, तिनका मोह भया मन मद का। 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमासा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा, आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमासा, किया खेल बड़ मेल तमासा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पे।

निरंजन जचना गुरप्रसाद पाइए परमार्थ सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कशु ना विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल जुग दुर्त दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कब होक को उपावे आत्म प्रगास कहो वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जा को शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे बिद मान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ ताहे कहां परवाह कहूं की जा कै बसीस धरयो गुरहथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही ओ पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खो जंत फिरे अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो ही ओ। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण। तिन को अवतार पयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं
तैं हर परम पद पायो। मनसा कर स्मरंत तुझै नर, काम क्रोध मिट्यो जो तिन। बाचा कर स्मरंत तुझै तिन, दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस, सरबल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत, नैन के तिमर मिटै खेन। जे सतगुर सिमरंत, हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत, जी की तपत मिटावै। जे सतगुर सिमरंत, रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै। सोई रामदास गुर बल पहन, मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाई है, सो सतगुर सिमरो न रो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पास। तां ते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासर हर चरण निवास। तां ते संगत सगन पाए पौ मान, तुम मली आगर प्रगट सुबास। ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन, नाम लैत उपजो जो प्रगास। जिह पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जाना, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। तां ते अंगद अंग संग पयो सायर, तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जीही कश कही ना जाई। सोडी सरिट सगल तारन कहो, अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै।

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया केव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलनहार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नारक दुनिया कैसी होई साल

लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना, औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं, काल पहुंच्यो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना पजै भगवान। धन धारा सम

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जन

काट काट में हरजू बस संतन कहो पुकार, कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पशान, कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजहो करण सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार, कहो नानक अपन तरै और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत, कोटन मैं नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा उपजै बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले है, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोबिंद नाम, कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाय होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी यार बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहे मन। जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिद हर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरै गुमान। नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई तऊ न हर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत कह नानक थिर नारा।

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, जो उपजियो सो बिरस है परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय, संग सखा सब

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन, प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही, प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे, ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र। द्वितीया माल कौसकिया लापे, संग रागनी पांचौ थापे, गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी, तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौसक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौसको भारा, खौ खटियाओ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौसक संग लाए, पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत, उठह तान कलोल, गायन तार मिला वही, तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए, सरस बान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी,

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर नवर दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत पतकारा खा पाकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहराया।

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज

असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य सूर मुह पख सार, असंख्य मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे।

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जोग जोग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले। गावन

जो सेव है जो सेव है तुझ जी जन नानक तिन कुर्बान। हर त्याव है तुझ जी से जन युग मह सुखवासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पो सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे।

तेरी अनक तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी, कर किरे

परमल मुख सुधी अग्न क्रोध चंडार रस कस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार बाबा बोलिए पत होए।

धात कौ सिफती सिफत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिलै संतोखिया हर जप एक कै पाए पाई।

नाम निदान अंतर हर सरव रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार हों तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार से सुखिये चौ जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार गुर मिलिया नाम पाईए चूकै मोह प्यास हर से ती मन रव रहया।

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है।

हर दरगाह पत खोए, हम मैं गुरमुख खोई है, नाम रत्ते सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह पर जलय, कर ही माहे उदासा रहाव। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, हर बैराग आनंद, अहनस भगत।

दूजै पाए। शब्द रतियां सोहागणी तिन विचहों आहो मैं जाए, तिन विचहों हो मैं जाए। सदा पिर राव है अपना तिन्ना सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिर मन पाया जाए। अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे भुख न जाए। आव हो मिल हो सहेली हो मैं पिर दे हो मिलाए। पूरे भाग सतगुर मिले पिर पाया सच समाए।

आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी शरणी पर मना जिस जे वडे अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा।